0: ऑलराइट, इसी के साथ मैं आपका स्वागत यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस। सुबह 7 बजे से हम और आप हैं साथ साथ एंड इट इज टाइम फॉर अस नाउ टू गेट इनटू द सेकंड आवर।
1: This is Musty Madness on Radio Musty.
2: चलते चलते हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल एंट्री मार चुके हैं, बट खबर कौन सी एंट्री मार रही है वो तो रेनुका बताएंगी।
0: भाई मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आते जाते खूबसूरत बड़े सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान ऐसा होता है जो वहीं का वहीं रहता है ना। बात कर रही हूँ
2: आई एम श्योर
0: बात कर रही हूँ मैं लैरी द कैट की। और अगर आप सोच रहे हैं ये लैरी द कैट कौन है, तो मैं बताना चाहूंगी कि भाई यूनाइटेड किंगडम, अगर आप चले लंदन तो लंदन में है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। और वहां पर पिछले कुछ सालों में आप जानते हैं डेविड कैमरून, थ्रीसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कायर स्टार्मर, इतने सारे लोग आके चले गए, लेकिन लैरी द कैट वही के वही है। 7 प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए, तो भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई टिक नहीं रहा, तो लग रहा है कि लैरी द कैट को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, एटलीस्ट 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम तो चलता रहेगा।
3: खुली सड़क में तगड़ी तड़क
2: भाई, अलग ही टशन होगा उसका। द ओनली थिंग परमानेंट इज लैरी द कैट,
0: यस।
2: बाकी सब आवन जावन करते रहते हैं वहां पर।
0: लैरी द कैट जो है वही का वही, ही इज द वन ग्रीटिंग ऑल द गेस्ट, स्लीपिंग एकदम डोर पे, कीपिंग वॉच आउटसाइड द फेमस ब्लैक डोर।
2: कितना काम।
0: हाँ, और वो भी लैरी द कैट भी कंफ्यूज होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है आज फिर बदल गया, यहाँ पर फिर बदल गया, यार ये क्या है।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: भाई प्रैंक खेलना और उसको अप्लाई करना, ये अलग लेवल की मस्तियां होती है, अलग लेवल की
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
3: और अगर आप सोच रहे हैं किस तरह की खबरें हैं यहाँ पर, कोई भी करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही, कोई भी नेशनल डे की बात नहीं हो रही है भाई, स्वतंत्रता दिवस की बात नहीं हो रही है, अगस्त के महीने की बात नहीं हो रही है, आने वाले दिनों की बात नहीं हो रही है, मतलब क्या कर रहे हैं ये, बॉलीवुड की भी बात नहीं हो रही है, तो यू आर द राइट प्लेस, दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: भाई प्रैंक के साथ साथ अगर मतलब वो लाइंस इरेज हो जाए जिसको ब्लरी लाइंस कहते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही होगा। तो हुआ कुछ ऐसा जेम्स मैकग्रॉ और इनकी वाइफ केली, ठीक है, ये वायरल किस रीजन की वजह से हुआ है, तो पत्नी ने पति को दिया हेयर कट, ठीक है, जेम्स को, बट जेम्स को मतलब बहुत ही गंदा हेयर कट दिया और उसको पसंद नहीं आया, तो उसने ऐसे मजे मजे में मतलब अरे ये तो टेक इट लाइट, इतना क्या सीरियस होना, वैसे करके कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट जेम्स डिड, कहता ओके फिर मैं भी कुछ ऐसा कर ही सकता हूँ ना, कि मतलब उसके बाद आई विल ऑल्सो जस्ट लाफ इट ऑफ।
3: बिल्कुल।
1: व्हाट ही डिड वॉज उसने टैटू कराया। टैटू क्या कराया? अपने थाए पे, ठीक है, अपनी बीवी के साथ ली हुई एक फोटोग्राफ, जहाँ पे जेम्स तो ऐसे ही नॉर्मल पोज कर रहा है अपनी बीवी को दिखाते हुए, जो कि एयरप्लेन की सीट पे मुंह खोल के तब खर्राटे ले रही होगी, उसने फोटो खींची होगी उस टाइम पे, मुंह खुला हुआ जेम्स की बगल में शक्ल, एंड व्हाट ही एडेड वाज आल्सो द डबल चिन विथ हाइलाइट।
3: दैट इज अ क्राइम
1: भाई साहब, वो जो मतलब अब थाए जो है उनका वाज एवरीवेयर एंड इट वेंट वायरल, बिकॉज वो तो अपनी शकल दिखा रहा है लेकिन बीवी की जो शकल आई है भाई, आर्टिस्ट को तो क्या ही आर्टिस्ट, उसने हूबहू जो शकल उतारी है,
3: पर गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो बाल तो फिर से उग जाएंगे, आगे जाके ठीक हो जाएंगे, ये टैटू तो बहुत गंदा जवाब, गंदा, बहुत घटिया, बहुत गंदा, नो नो।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: पानी हो रही है, ये पानी पानी। इसी बात से याद आया, ये बादशाह का डिवोर्स हो गया ना कि नहीं हो गया? ओ माय गॉड, व्हाई आर वी टॉकिंग बॉलीवुड?
1: This is Masti Madness on Radio.
2: Divorce हो गया, शादी भी हो गई वापस से, just keeping everybody
0: up. Okay, not right now. No.
2: Yeah.
0: Radio Masti 24/7. Well, क्या है कि दुनिया में सिंगल लोगों की अब जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे डेटिंग एप्स हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी लोगों को कोई नहीं मिल रहा है, right? There's lot of single women and single men out there. So, फिनलैंड में क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी, तो वहां की सरकार ने एक नई चीज शुरू करी. बोला, देखो जी, एक ऐसी जगह है जहां पर सब जाते हैं, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, ठीक है? और वो जगह है शॉपिंग सेंटर, जहां पर ग्रोसरीज शॉपिंग होती है. खाने के लिए तो जाएगा ना, चाहे एक चीज लेने चाहे दस. तो उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किए ब्राइट पिंक शॉपिंग बास्केट्स कॉल्ड सिकुकोरी. अब सिकुकोरी क्या होता है कि अगर आप वहां जाके ब्राइट पिंक शॉपिंग बास्केट उठाते हैं टू शॉप, दैट मींस यू आर सिंगल एंड ओपन टू मिंगल. एंड वहां पर अगर कोई भी आसपास है जिसको इंटरेस्ट है किसी से बात करने में, तो वो आपको अप्रोच कर सकता है. दैट्स लाइक अ वे टू से कि ओके, आई एम ओपन, यू कैन कम एंड टॉक टू मी. सो स्टैंडर्ड ब्लैक बास्केट्स पड़ी होती हैं, ग्रे वाली पड़ी होती हैं और पिंक वाली पड़ी होती हैं. तो बिल्कुल वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो आकर करें. और फिर उसके बाद ऑफकोर्स वहां से हो सकता है कि रिश्तों में प्यार आ जाए और सब्जियां आपकी कॉमन हो और आप उसके बाद आगे बढ़ जाएं. Bambule.
2: What a cool idea. I really like it.
0: I liked it. Without making anybody feel offended or whatever, right? It's basically, I'm looking for company and you're looking for company and this is the best thing, right? Love it.
2: I know. Times have really changed. From the times हम लोग जब आरचीज जाते थे और we could not declare that we are going to just have a glimpse of our crush over there.
0: बिल्कुल.
2: दूर दूर से सब देख पारते रहते उसको कि एक झलक दिख जाए तो मजे ही आ जाए. Here it is a little bit open. I love it.
0: Love it. In fact, मुझे लगता है कि जो सिंगापुर में प्रॉब्लम है सिंगल लोगों की एंड ऑल दैट एंड दे कांट फाइंड समबडी, दिस इज अ ग्रेट वे, राइट? यू आर बेसिकली इंडिकेटिंग दैट यू आर ओपन एंड और अगर यू आर नॉट ओपन एंड स्टिल यू आर इंडिकेटिंग तो और भी मजे. चल पिंक वाली उठाएंगे अंतरा, ठीक है?
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आमिर खान wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
1: सलमान खान wanted answers.
3: कैसे किया ये?

0: तरीके, अलग अलग टाइप के आइडियाज जो है मार्केट में आ रहे हैं, विच इज क्वाइट नाइस. जैसे अभी पिछला आइडिया था, ये भी एक आइडिया है.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती में.
2: इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन एक्साइट मी एट एनी पॉइंट ऑफ द डे और नाइट, इट इज क्रिएटिविटी. कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी अलग, मतलब दुनिया का जो भी बोरिंग मोनोटनी है उसको तोड़ के कुछ नया करना. आंसर यरिंग में एक्साइटेड, जल्दी बता.
0: यस, कुछ

0: ऐसा है कि गुड़गांव की ये बंदी है, शी हैज गॉन वायरल फॉर दिस रीजन, बट शी हैज ऑल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क एवरीबडी. सो वेल, अब ये बंदी क्या करती है, शी हैज गॉन वायरल क्योंकि जब जब ये घर में रेस्टोरेंट स्टाइल मील, यानी कि कुछ बहुत ही खास अपना एफर्ट डाल के थोड़ा प्लेटिंग व्लेटिंग करके घर पे कुछ बनाती है, शी चार्जेस 1,000 रुपीज. उसके हस्बैंड को उसके लिए 1,000 रुपीज पे करना पड़ता है. एंड you know she also says that it's not about like I want to earn from him or something, but it's about mera time effort, ye sara jo creativity main dal rahi hu, plating kar rahi hu, tere ko de rahi hu restaurant type ka meal, jo bas ye hai 20,000 kama leti hai wo ek bar mein kar kar ke aise restaurant type meal usko serve karte hue. And दो इंटरनेट इज डिवाइडेड, बट शी इज ऑल्सो आस्किंग, भाई अनपेड लेबर इतने सालों से तुम लोग को मिलता आया है, तो मतलब ऐसे ही तो ना मैं चार्ज कर लेती हूँ, उसमें क्या है. ऑल्सो द अदर साइड ऑफ इट, नोबडी आस्क्ड कि इट हैपन्स द अदर वे अराउंड एज वेल, कहते आई ऑल्सो पे 1,000 इफ ही कुक्स फूड.
1: आई लाइक इट, I like that. It's a pretty...
0: It is not bad if you actually practically think about it. It's not just she's saying ki main hamesha 1,000 rupees karke kamati hu. Even if he cooks, I pay him.
1: Wonderful.
2: Equality. बराबर, हमेशा, very good.
3: हर सब
2: कितनी खुशी हो रही है मुझे आज, आंखें भराई मेरी,
0: है ना. बहुत ही कमाल का कूल आइडिया लगा मुझे. हाँ. मतलब दोनों तरफ एकदम सही बात. एंड एक्चुअली मैं nobody asked her कि भाई यू नो हर कोई उसी को बोल रहा है कि तू क्यों चार्ज कर रही है 1,000 रुपए घर में खाना बनाने के लिए. बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि ऐसा करते करते जो खाना हम लोग रेस्टोरेंट में स्पेंड करते थे जितना अमाउंट, वी आर काइंड ऑफ सेविंग इट ड्यू टू Good. This thing.
1: Creative.

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा मुझे आगे फाड़ फाड़ के देख रही है, ऐसे मत देखो ना, प्लीज मत देखो, प्यार हो जाएगा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती।
2: आपने सुना ना, द वे शी स्टार्टेड रेडियो मस्ती, ओके यस बताओ।
0: अभी बोलना भी जरूरी है, लेकिन जब हर बार बोलते हैं हम तो लगता है यार ठीक है, मतलब अब हर बार नए तरीके से बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा। तो भाई ऐसा है कि
2: बहुत बढ़िया, अरमान जग गए सबके, बताओ।
0: We are Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network Singapore, and this is RJ Antara and I am Renuka. Well, लेके चलेंगे आपको। अब तुम थोड़े शांत हो जाओ तो हम खबर बता देते हैं। खबर ये है कि उसमें मेरे को तुम्हें लेके जाना है साउथ कोरिया सोल। चलोगी तुम कि नहीं? Okay. चलोगी
2: बिल्कुल, अभी के अभी चलो,
0: है ना?
2: आई तो लव कोरिया,
0: ठीक है। सो भाई एक वहां पर एक ओनर है ऑफ अ 2 मिचलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट, एंड उसको एक साल की हो गई है जेल, और साथ में उसको फाइन मिला है 20 मिलियन वॉन का फॉर सर्विंग रफली 49,000 इम्पोर्टेड ब्लैक एंड्स एज अ डिजर्ट गार्निश फॉर 4 ईयर्स। तो अगर तू पहले कोरिया गई है और तू इस रेस्टोरेंट में गई है, तेरे पेट में 49,000 इम्पोर्टेड ब्लैक एंट्स में से कोई तो होगी अगर तूने वही वाला डिजर्ट खाया जिसका ये गार्निश था। ओके, सो अब हुआ ये कि साउथ कोरिया जो है ना लीगली अलाउ करता है 10 इंसेक्ट स्पीशीज फॉर कंजम्पशन, जैसे कि ग्रास हॉपर है या मील वर्म्स है, वर्म्स है कुछ कुछ, या
2: मैंने सुना हुआ है।
0: हाँ, लेकिन एंट्स उसमें नहीं है। ओके, दे आर नॉट द अप्रूव्ड स्पीशीज। अब ये जो रेस्टोरेंट है इसने इंपोर्ट की ब्लैक एंट्स फ्रॉम थाईलैंड एंड द यूएस, एंड क्या है कि गार्निश ऑफ अ पैलेट क्लेंजिंग सोर्बे उसने यूज किया, ठीक है। एंड फिर प्रोसिक्यूटर्स ने तो पकड़ लिया उसको, धर दपोचा, और साथ में उसको बोला चल बेटा तू अंदर चल, तेरे 15-course मेनू में एंट्स को सर्व करना वॉज नॉट अलाउड। ओके, सो इसीलिए प्लीज, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, कैसी क्रंची और सावर लगी होंगी ना
3: डिजर्ट? तभी कहते हैं कि एंट इन एनी वे अप्रिशिएट इट फ्रॉम फार, क्योंकि वो वैसे ही वाली चीज है, चाहे ये एंट हो या वो एंट हो। ना, आप बिल्कुल नहीं खा सकते, नो नथिंग, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ओ माई गॉड,
0: आई कैन फील देम रिगलिंग इनसाइड।
3: कैन यू स्टॉप इट?

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.
3: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
4: टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: भूख लगी, जोरों की भूख लगी. मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी.

0: अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस की बात होती तो रेणुका आप कौन सी पदवी लेना पसंद करती?
1: डिपेंड करता है, मैं नहीं आंसर करूंगी ऐसे ही ब्लैंक वाला, मुझे पता है इसमें कोई कैच है।
0: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
1: फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड आवर चल रहा है इस समय हमारा रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंतरा।
0: हाँ जी, तो कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेचारा बच्चा की क्या ही वो एक्सप्रेशन देता, बट कुछ ऐसा हुआ कि भाई स्कूल में जो है स्पोर्ट्स डे रेसिंग हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो वो जो वाला होता है ना कि फर्स्ट पेडेस्टल फिर सेकंड फिर थर्ड, वहां पे बच्चों को खड़ा किया जाता है और उनके प्राइजेस और मेडल्स पहनाए जाते हैं, तो ये तीनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। बात हैरानी की ये थी कि जो फर्स्ट प्राइज विनर था ठीक है, उसको मिलती है बहुत खास किताबें, लाइक रियली नाइस बुक्स, एंड द सेकंड प्लेस विनर गेट्स अ गेमिंग पीसी।
1: ओह अच्छा।
0: एंड द थर्ड प्लेस विनर गेट्स अ फोन।
1: वेरी नाइस।
0: सो and this you can see the child like he's holding apna, jaise wo hota hai na ki wo bada sa check de dete hai just to show everybody, wo apna prize ka photo placard leke khada zarur hua tha lekin uske chehre ke expression sachai bata rahe the jab wo side by side dekh raha tha ki hello, aur us first wale bacche ki maa khush, mere bacche ko to books mil gayi hai yahan pe, wah।
1: हाँ बिल्कुल सही है, माँ बाप के लिए फर्स्ट आओ और अपने लिए मेरे ख्याल से थर्ड आओ। क्या रखा है तू सोच। वैसे जो प्राइस दे रहे थे उन्होंने भी सोच समझ के दिया, भैया फर्स्ट है, इसको पढ़ाई करने का शौक है, इसको और किताबें दो, ये तीसरा है, इसने तीसरे वाले ने आगे जाके यही काम करना है, इसको आज से प्रैक्टिस करने दो, अपने फोन पे जो करना है करो भाई, हम तो थर्ड आके खुश है जिंदगी में। बिल्कुल वी आर फाइन, वी आर नॉट कॉम्पीटिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी पीपल टू कॉम्पीट। छोड़ो तुम बढ़ो आगे सानू की।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आइए आइए आइए, रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका इंतजार कर रही है अंतरा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: हाँ जी, हाँ जी साहब, में रेणुका भी है। वो जो आवाज थी ना, वो इन्हीं की थी, जस्टिन।
0: अच्छा, छुट्टी पे जब जाते हैं राइट, एंड कहीं भी चले जाओ, खैर हमारा भारत इतना महान है कि भारतीय हर जगह मिल जाते हैं। ऐसी कोई खास ही जगह होगी जहां पर कोई भी आपको इंडियन नहीं मिलेगा छुट्टी पे, राइट? सो वेल, और अगर थाईलैंड की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से वहां तो नुक्कड़ नुक्कड़ पर इंडियंस मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन कोई सेल्स के कोई ट्रिप्स होते हैं कि भाई आपने अपने बहुत अचीवमेंट करा अपना टारगेट, तो आपको थाईलैंड के ट्रिप मिलते हैं। सो यू नो इट इज लाइक वेरी वेरी कॉमन। एंड फुकेट जाने का तो वैसे ही भारतीयों को बहुत ज्यादा शौक है, राइट? सो हाल ही में हुआ कुछ ऐसा कि एक होटल फ्रॉम फुकेट से एक वीडियो हो रहा था वायरल, और उसमें अ ग्रुप ऑफ इंडियन टूरिस्ट वर एंटरिंग द होटल का स्विमिंग पूल वेयरिंग देयर रेगुलर अंडरगार्मेंट्स इंस्टेड ऑफ एनी स्विमवेयर। सो बेसिकली ये वाला भी साइट हमने बहुत जगह देखा है, राइट? कि चलो यार पूल में ही तो जाना है, इट इज लाइक तालाब में ही तो जाना है, कच्चे बनियान में चले जाओ, है ना भाई? तो अब ये चीज के बाद में होटल का स्टाफ उनको जाके बोलता है, सॉरी सर, देयर इज अ ड्रेस कोड एंड आप ऐसे नहीं जा सकते, थाईलैंड या कहीं भी नहीं जा सकते यार, इवन कॉन्डो के पूल में नहीं जा सकते। बट हैव यू सीन, कई बार हम देखते हैं कि कॉन्डो के पूल्स में भी बच्चों को कपड़े उतार के बोलते हैं जा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है।
2: आई नो,
0: क्या है ये?
2: आई हैव सीन दिस
0: एग्जैक्टली। कोई हाइजीन स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फैसिलिटी के रेगुलेशंस होते हैं, क्या है ये? तो कैसे डील करे ऐसे? इफ यू सी समबडी डूइंग दैट एंड देयर इज नो ऑफिशियल अराउंड, तू कुछ करेगी या यू विल जस्ट इग्नोर इट?
2: नहीं नहीं, आई थिंक तू पेनल्टी लगा दो ना, कि अगर आप पाए गए तो आपको इतने, जैसे ही जहां पे देखो जिसको ना उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, जैसे पैसे इन्वॉल्व हो गए ना अपने आप सब ठीक हो जाएगा।
0: ना ना ना ना, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई ऑफिशियल नहीं है और तुम देख रही हो किसी को ऐसे पूल में जाते हुए, तो विल यू स्टॉप द पर्सन और यू विल नॉट से एनीथिंग?
2: नहीं, मैं चुपचाप जाकर बता के आ जाऊंगी, उनसे जाके लड़ेगा कौन?
0: हाँ, तो मैं ऑफिशियल्स को जाके बता दोगे राइट, कि भाई साहब इनको कुछ समझाओ, इनके कच्चे इतने गंदे हो रहे हैं और ये पानी में घुस रहे हैं, हम कैसे जाएं? गुड पॉइंट।
2: सो आई विल नॉट गो एंड कॉन्फ्रंट देम, आई जस्ट डू माय सिविल सिटीजन ड्यूटी।
0: शाबाश, छुप के, बेसिकली स्निचिंग। गुड जॉब।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आइए जी आइए, आपका स्वागत करते हैं मस्ती मैडनेस की इस मैड सी दुनिया में. आपका फ्राइडे, चलो चलो और भी कुछ बताते हैं.
3: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, फ्राइडे है, अंतरा जी ने बताया है, मस्ती मैडनेस है ये भी बताया है, रेणुका है यहाँ पर और अंतरा है, ये मैं बता देती हूँ. और अगली खबर इनकी है, बताइए बताइए, वो भी आप बताइए.
2: हाँ जी, खबर कुछ ऐसी है कि भाई पता नहीं आजकल ये मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर्स को क्या ही हो गया है. रेणुका जी हाँ, आओ आपको दुनिया में लेकर जाए इस मल्टी मिलियनेयर की. रेणुका मेरे को ताड़ रही है कि हम बात तो कुछ और करने वाले थे, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे उसके बाद, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस.
4: यस यस, गो अहेड. लोग अपनी
2: पर्सनैलिटी जो है, हम चाहते हैं कुछ लोग जरूर अपनी पर्सनैलिटी बदले, बट इतनी भी नहीं बदले. सो जापान के ये 26 साल के मिलियनेयर है और इनका नाम है जासो. एंड ही हैज स्पेंट 200, ही इज अ मिलियनेयर बिलियनेयर कुछ भी बुला लो, बहुत पैसा है भाई के पास, ठीक है. 220 करोड़ खर्च किए हैं टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ असली कुत्ता. सर्जरी करा करा.
4: अरे यार, पैसे ज्यादा आ जाए तो इंसान को समझ नहीं आता वो कहाँ पे खर्चे है ना. आई थिंक यही प्रॉब्लम होती है.
2: लाइक भाई, इतने पैसे लेकर तुम कुत्ते बन गए.
4: हाँ ठीक है, मतलब चलो, he's faithful, but the point is, what is the idea? Actually, क्या है इंसान को, इसीलिए मैं हर बार तेको बोलती हूँ ना कि मेरा मन करता है कि सोशलिस्ट होना चाहिए हर जगह. मतलब कि बराबर के पैसे, हर इंसान के पास बराबर के पैसे होने चाहिए. कितना मेरा डेप्थ में ख्याल है. तो अब ये इंसान बनेगा या अब हो गया ये परमानेंट?
2: नहीं, like he has done बहुत ज्यादा सर्जरीज करा लिए ना भाई ने. भाई अब वो ना, वो वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में जाना तो इम्पॉसिबल है. लाइक हिज फेस आल्सो लाइक लुक्स लाइक,
4: या इट्स ओके, बिकॉज़ यू रिमेंबर अंतरा, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग विद समबडी हु कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ टाइगर और समथिंग, राइट? एंड वी सेड दैट इट इज नॉट दोस पीपल हु शुड बी पनिश्ड, इट इज द डॉक्टर्स हु एग्री टू डू इट फॉर अ सम ऑफ मनी एंड ड्रामा हु शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, बिकॉज दिस इज नॉट राइट. है ना,
2: दिस इज सो नॉट राइट. आई मीन आई फील बैड, पर पैसे मतलब वही लग रहा है, और भी ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि भाई के पास पैसे बहुत थे जो कहीं और खर्च हो सकते थे, लेकिन भाई सिलेक्टेड समथिंग लाइक दिस. या

0: वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7। यहाँ पर जो अगला हमारा गाना आने वाला है, तौबा तौबा, वाकई हमारी न्यूज के जैसा है। गुड मॉर्निंग।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी
2: एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल न्यूज, हमको ये लगता है तौबा तौबा, क्या ही कर रहे ये लोग क्यों ही कर रहे ये लोग।
0: हाँ, तो गुड मॉर्निंग तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस समय तो फ्राइडे की सुबह है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं ऑन कोर तो अंतारा सैटरडे की शाम है और इस समय 8 बजने वाले हैं बहुत ही जल्द, सुबह के 10 और रात के 8। क्या बात है। अब ऐसा है, अगर तुम गई हो जापान और जापान में

0: अगर इनफॉर्मल स्ट्रीट लेवल की बात करी जाए तो वेल देयर इज समथिंग कॉल्ड द जेके एली, राइट। अब बहुत से लोग जो गए हैं वो जानते होंगे, प्राइमरीली टोक्यो के एरियाज में है, जैसे कि आकिहाबारा एंड इकेबुकारो, ये सारे के सारे कॉन्ट्रोवर्शियल जेके बिजनेस के साथ में दीज आर एसोसिएटेड। दैट मीन्स हाई स्कूल गर्ल, इन जगहों पर जो यंग लड़कियां हैं या लड़कियां वो ड्रेस्ड इन स्कूल यूनिफॉर्म्स, दे गेट पेड कंपेनियनशिप सर्विसेज, जैसे कि वॉक्स के लिए चलो, चैट्स हमारे साथ बैठकर करो, या कैफे डेट्स, राइट। और कस्टमर्स जो है वो पे करते हैं आवली या फिक्स्ड रेट्स फॉर एक्टिविटीज लाइक वॉक्स, कॉन्वर्सेशन, टेबल टाउन, एंड ऑफकोर्स ग्रे जोन है थोड़ा सा, क्योंकि लीगली इनोक्यूअस कंपेनियनशिप या रिफ्रेशमेंट सर्विसेज कह लीजिए, वॉच डॉग्स और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो कहते हैं ये काफी ग्रे जोन है, ये सही नहीं है। और इसीलिए दे से कि अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यहां पर हो सकता है, लेकिन फिर भी चले चला जा रहा है। तुम गई हो या फिर तौबा तौबा?
1: नहीं, आई एम स्टिल ऑन द तौबा साइड, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ। बट जापान के बारे में कितनी सारी इस तरह की सर्विसेज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट यू कैन रेंट अ फादर, यू कैन रेंट अ बॉयफ्रेंड, यू कैन रेंट अ गर्लफ्रेंड, यू कैन रेंट अ पर्सन फॉर डूइंग नथिंग आल्सो, जस्ट हैंग अराउंड विद यू ऑल डे,
0: और इवन हग यू और क्राई विद यू और क्राई फॉर यू। सो ये सारी चीजें जापान में ही हैं, और मुझे लगता है कि इट्स वेरी कुछ अलग ही है। स्कूल गर्ल्स के साथ में क्या फेटिश है, ये मुझे अभी तक समझ में आता नहीं है।
1: फिर फेटिश, लेट अस नॉट इवन गो देयर, एट लीस्ट ऑन मस्ती मैडनेस आई थिंक बोथ ऑफ अस नो फेटिश कैन गो टू एनी लेवल।
0: इन जापान पहले भी मैं एक बार ये कर चुकी, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए थे, ओके समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो तौबा तौबा।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
2: आई लव यू रसना,
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: देखते ही देखते देखिए ना, जैसे शो समाप्त होने वाला है वैसे ही अगस्त का महीना भी बस आया और गया।
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है।
0: बट आई लव दिस टाइम ऑफ द ईयर अंथरा, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेजर फेस्टिविटीज, राइट? इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बताओ कौन सा फेस्टिवल है अगले हफ्ते, बताओ।
1: मुझे तो ये वाला टाइम पीरियड ही इतना मस्त लगता है। इट स्टार्ट्स विद नेशनल डे का सेलिब्रेशन एंड देन बैक टू बैक इतनी सारी चीजें होती रहती है, जैसे अगले हफ्ते है भैया मेरे और बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना, रक्षा द बंधन वी आर टॉकिंग अबाउट। आप हमें भी बांध सकते हो, हम आपकी रक्षा करते हैं कितनी सारी चीजों से, है ना, सो दैट नेगेटिविटी आपको टच भी करके ना जा पाए। कौन करते हैं? हम करते हैं।
0: मैं तब से बोल रही हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ भाई। पिछले 17 सालों से मैं ऑन एयर बोल रही हूँ मुझे एक भाई चाहिए,
1: खोज नहीं कर रहा हूँ।
0: हाँ, और मैं वो भाई ढूंढते ढूंढते खुद भाई बन गई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भाई नहीं मिला। खैर भाई छोड़ो, रक्षाबंधन इज ऑन 28th, जाओ ज्योति स्टोर और जाके अपने लेटेस्ट स्टाइल के जो राखीज हैं वो लेकर आओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। साथ में पूजा की थालीज एंड एवरीथिंग विच यू कैन गेट ओनली एट ज्योति स्टोर्स, कैंबल लेन, सेरंगून रोड, राइट?
1: या और यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो, jothijyoti.com.sg पर जाकर बिल्कुल आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो।
0: बिल्कुल, और जब जा ही रहे हो तो उसके थोड़े दिनों के बाद में हमारे गणपति जी घर आने वाले हैं, तो बप्पा को वहीं से जाकर आप अपनी पसंद की जो आपको मूर्ति चाहिए वो बिल्कुल आप लेकर आ सकते हैं और तैयारी शुरू कीजिए। सारा पूजा का सामान, एवरीथिंग इज व्हाट यू विल गेट देयर, एवरीथिंग एट ज्योति स्टोर्स। एक्चुअली अंथरा, द फर्स्ट शॉप आई एवर वेंट टू फॉर माय फेस्टिविटीज वाज ज्योति स्टोर्स व्हेन आई केम टू सिंगापुर मोर देन 20 ईयर्स बैक, एंड आज तक एग्जैक्टली दैट इज द प्लेस। और कोई जगह ही नहीं है पूरे सिंगापुर में। तुम्हें क्या लगता है घर घर में जो बेचते हैं, आई डोंट थिंक यू स्टिल गेट व्हाट यू वांट, राइट? बट ज्योति गिव्स यू लाइक,
1: मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दिस नो थिंकिंग about twice about it, like whenever you think about घर में कोई पूजा करना है या फिर कोई त्योहार आने वाला है, it is Jyoti Stores.
0: Absolutely.
1: You always go there. Absolutely. And you always get every single thing over there. मेरी मम्मी ऐसे कभी कभी चीजें बताती है मुझे इतने पर्टिकुलर जो कभी शायद उनको कानपुर ना मिलता हो, मैं कह रही हूँ मेरे सिंगापुर में मिलता है।
0: वाह, ज्योति स्टोर्स में मजा आ गया। सो भाई ज्योति स्टोर्स जाओ, एक चक्कर तो लगा के ही आ जाओ। आई एम श्योर आप नहीं भी कुछ सोच के जाओगे तो भी आपको कुछ पसंद आ जाएगा, बिकॉज that amazing that shop is, and of course it's got this generations behind it. तो भाई ऐसे वैसे नहीं है, Jyoti Stores is where you need to go, and अभी की हम need to go also. चल माशुका चले, चले माय माशुका,
1: एग्जिट मारेंगे बिल्कुल फ्राइडे है।
0: एब्सोल्युटली, इसी गाने के साथ में हम निकल रहे हैं यहाँ पर, और आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? हमारे साथ जुड़े रहना, हम तो जुड़े रहेंगे ही आपके साथ। चलो ओके बाय।
1: रेणुका सेक्सी आवाज में बोल के जाना जरा।
0: जा रही हूँ, मिलूंगी मंडे को, बाय।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
6: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ लेजेंड्स फिर से। और आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके बारे में आपसे एक सवाल। हालांकि हमारे फेसबुक पेज पर लिख दिया गया है कि आज कौन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अपडेटेड नहीं है उनसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। एक गाना है राज कपूर साहब का, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन भी मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह। और एक गाना है जिसने शशि कपूर को पहचान दिलाई, परदेसियों से ना आंखियां मिलाना। और एक गाना है जिसने मनोज कुमार साहब को भारत कुमार बना दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इन तीनों में कॉमन बात क्या है, बताइए बताइए। हाँ नहीं, वो माना कि तीनों ही गाने कमाल के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक और चीज है जो तीनों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, बल्कि मैं कहता हूँ बनाती है। सोचिए सोचिए, हालांकि हिंट दे चुका हूँ मैं। यू गेस इट राइट, अगर आपने गेस किया है तो। इन तीनों ही गानों को कंपोज किया है कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह ने। तो सिंगापुर आज यही हैं हमारे लेजेंड्स, जिन्हें हम प्यार से कल्याण जी आनंद जी कहते हैं।

0: करता हूँ।
1: एक ऐसी संगीत की जोड़ी जिन्होंने हिट नहीं सिर्फ सुपर हिट म्यूजिक दिया। जब तक इन्होंने काम किया हर साल एक से बढ़कर एक म्यूजिक इन्होंने दिया। तो सिंगापुर आज का शो इन्हीं के नाम। आज तो बरसात होने वाली है बहुत ही उम्दा गानों की, तो आप भीगने के लिए तैयार रहिए। छाता वाता मत खोलिएगा, अपने आप को भीग जाने दीजिएगा और मस्ती अगर चढ़ जाए माहौल में आ जाए तो नाच लीजिएगा, गा लीजिएगा, गुनगुना लीजिएगा और सुनते रहिएगा सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां से मैं हूं आपसे मुखातिब। मेरा नाम है समर, मिलता हूं इन गानों के पार। स्टे कनेक्टेड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मेरे यानी समर के साथ। और आज हमारे साथ हैं एक म्यूजिकल जोड़ी, कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी बड़े भाई हैं और आनंद जी छोटे। 30 जून 1928 को कल्याण जी भाई का जन्म हुआ और 2 मार्च 1933 को आनंद जी भाई का जन्म हुआ गुजरात के कच्छ में। तो कुल मिलाकर दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, यानी ये पैदाइशी तो गुजराती थे लेकिन जब ये छोटे थे, मतलब महज उस वक्त इनकी उम्र होगी 7 साल, तब इनकी फैमिली मुंबई आ गई अपने बिजनेस के सिलसिले में। उसको बढ़ाने के लिए ग्रोसरी का बिजनेस हुआ करता था इनका खानदानी। मुंबई में जहां ये रहते थे गोरेगांव में, वहां काफी सारे म्यूजिक स्टूडियोज हुआ करते थे, तो ये वहां जाने लग गए और म्यूजिक का शौक इन्हें चढ़ गया। अच्छा, कल्याण जी का रुझान तो शुरू से ही म्यूजिक की तरफ था, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाया करते थे, लेकिन आनंद जी भाई एक्टर बनना चाहते थे। पहले तो आपको एक और बात बताऊं, जब ये स्टूडियोज में जाते थे तो छोटा मोटा कोई रोल इन्हें भी मिल जाता था स्कूल के जमाने में। तो ये क्या करते थे कि जो मेकअप होता था ना उसे धोते नहीं थे और स्कूल के ड्रेस की कॉलर पर थोड़ा सा मेकअप अपने चेहरे से लगा लिया करते थे। और जब स्कूल जाते तो फ्रेंड्स पूछ ही लेते थे कि ये चेहरे पर क्या लगाए, और अगर नहीं पूछते थे तो ये खुद उनसे बोलते थे कि यार ये शर्ट की कॉलर पर कुछ लगा तो नहीं है, देखना। और जब लड़के पूछते कि ये क्या लगा है तो आनंद जी बोलते, अरे यार कुछ नहीं, बस वो कल शूटिंग पर गए थे ना तो थोड़ा मेकअप लगा रह गया हुआ। आप खुद सुन लीजिए क्या कहते हैं ये।
2: तो क्या करते थे हम लोग, मेकअप लगा के कल स्कूल में पहनने उस शर्ट को लगा देते थे, और फिर जाके स्कूल में गए हुए हैं तो बार बार यूं कॉलर करो तो कोई पूछे नहीं, तो फिर बोलेंगे यहाँ दाग है क्या, कोई खुद ही पूछे तो बोले क्या है, तो बोले कि ये दाग काय का है, बोले शूटिंग में गया था, शूटिंग में पिक्चर की, बोले हाँ। तो यूं करते करते मैंने अपने टीचर थे उनको भी लपेट लिया ताकि छुट्टियां भी मिल जाएं।
1: कमाल के इंसान है आनंद जी भाई। भाई ये बड़े लोगों की बड़े बड़ी बातें होती हैं। खैर, सिंगापुर अभी वक्त हो चला है गाने सुनने का, और गानों के उस पार हम बात करेंगे कि किस धुन ने कल्याण जी को पहचान दिलाई एक म्यूजिक आर्टिस्ट के रूप में। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। मैं हूँ समर, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में उस पार।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आइए आइए आइए, मैंने कहा था ना मिलता हूँ आपसे उस बार, मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, मेरा नाम है समर और आज हम बात कर रहे हैं एक नहीं बल्कि दो दो कमाल के संगीतकारों की, एक संगीतकार जोड़ी की, कल्याण जी आनंद जी की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा उस धुन के बारे में जिसने कल्याण जी को पहचान दिलाई। शुरू शुरू में कई फिल्मों में कल्याण जी ने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। लेकिन 1953 में एक फिल्म आई नाग पंचमी जिसमें कल्याण जी ने पुंगी से एक धुन बजाई जो ये थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद ये धुन काफी म्यूजिक कंपोजर्स को बहुत अच्छी लगी, खास करके हेमंत कुमार साहब को। 1954 में एक फिल्म बन रही थी नागिन, इसका म्यूजिक हेमंत कुमार साहब दे रहे थे, तो अब नागिन में बीन की धुन तो बजेगी ही ना। तो हेमंत दा को कल्याण जी का ख्याल आया और वो तुरंत उनके पास पहुंच गए। कल्याण जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यार कल्याण भाई देखो, मैं एक फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूं जिसमें मुझे आपकी वो बीन वाली जो धुन थी ना जो आपने नाग पंचमी में बजाई थी वैसी कुछ चाहिए। कल्याण जी ने कहा क्यों नहीं, जरूर बजाएंगे। लेकिन क्योंकि कल्याण जी तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर थे तो उन्होंने कहा कि देखिए एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है तो मैं उससे आपको वही धुन निकाल कर दे दूंगा, बल्कि इसमें ज्यादा स्वर अच्छे से आ सकते हैं तो अच्छी ट्यून बन जाएगी। तो हेमंत दा ने कहा देखो भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, अगर तुम कह रहे हो कि अच्छी धुन निकल जाएगी तो निकल जाएगी, ठीक है बजा दो, उसी से बजा दो। तो उन्होंने एक नए इंस्ट्रूमेंट क्लेवलिन से ये धुन निकाली और क्या निकाली, लोग आज भी उनकी धुन पर बल खाते हैं, नाचते हैं जब ये गाना बजता है। कल्याण जी की बनाई ये धुन सुपर डुपर हिट रही और आज भी हिट है। आज भी नागिन का कहीं भी जिक्र होता है तो यही धुन बजती है और कल्याण जी इसी धुन के साथ सबकी नजरों में आ गए। लेकिन अब तक सिर्फ कल्याण जी वीर जी शाह थे अकेले, तो इन अकेले कल्याण जी वीर जी शाह से कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी कैसे बनी, बात करेंगे इन नगमों के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से, मैं हूं समर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। वैसे आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये शो कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि कल्याण जी वीर जी शाह से कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी कैसे बनी। हुआ दरअसल यूं कि आनंद जी जो इनके छोटे भाई थे वो इनको असिस्ट किया करते थे। जब ये नागिन की धुन बजा रहे थे तब भी आनंद जी इनके साथ में थे, लेकिन नागिन की धुन हिट होने के बाद डायरेक्टर सुभाष देसाई ने कल्याण जी से कहा कि यार तुम सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, फिल्मों में म्यूजिक क्यों नहीं देते, मैं तुम्हें साइन करता हूँ। सिंगापुर कल्याण जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुभाष देसाई का 11 नंबर लकी नंबर था, इसलिए उन्होंने मुझे पहली बार ही 11 फिल्में एक साथ साइन करवा ली। 11 फिल्में, कैन यू बिलीव दिस। बहरहाल 1959 में फिल्म आई सम्राट चंद्रगुप्त, जिसमें भारत भूषण और निरूपा रॉय थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें कल्याण जी वीर जी शाह ने म्यूजिक दिया। कल्याण जी वीर जी शाह ने अभी भी, हाँ अच्छा, म्यूजिक तो ठीक था, अच्छा था, एक गाना हिट भी था इसका, ये वाला।
2: चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो।
1: लेकिन इसके बाद इन्होंने सुनील दत्त की पोस्ट बॉक्स 999 में म्यूजिक दिया। हालांकि इस दरमियान आनंद जी इनको असिस्ट करते रहे, तो कल्याण जी को लगा कि यार क्यों ना दोनों के नाम से म्यूजिक दिया जाए, हेल्प तो कर ही रहा है मेरी। बहरहाल 1959 में ही रविंद्र देव के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म सट्टा बाजार आई, जिसमें पहली बार कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह ने म्यूजिक दिया। इसके बाद इसी साल इन्होंने एक और फिल्म करी मदारी, लेकिन इन दोनों फिल्मों का म्यूजिक एवरेज था, मतलब यूं कह सकते हैं कि ठीक ठाक था। दोनों को इंतजार था एक हिट फिल्म का, तो वो कौन सी फिल्म थी जिसने कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह को कल्याण जी आनंद जी बनाया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। उन्होंने इतने कमाल के गाने कंपोज किए कि मेरा मन कर रहा है कि पहले आप इन्हें सुन लीजिए। ये कहानी जारी रहेगी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, इसलिए यहीं आइएगा लौट कर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: स्वागत आप सभी का इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स। फिर से मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव से आपसे मुखातिब हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष देसाई साहब ने कल्याण जी आनंद जी से साइन करवा ली 11 फिल्में। तो 1961 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था छलिया। राज साहब और नूतन जी इस फिल्म में थे। एक और खास बात, मनमोहन देसाई जो सुभाष देसाई के छोटे भाई थे उनसे ये फिल्म डायरेक्ट करवाई गई। सुभाष देसाई ने कल्याण जी से कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये नाम थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, कल्याण जी वीर जी शाह, आनंद जी वीर जी शाह, इसे कुछ छोटा करो, जम नहीं रहा है कुछ। तो कल्याण जी बोले आप ही बता दीजिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा ये जो वीर जी शाह है ना इसको हटा दो, खाली कल्याण जी आनंद जी रहने दो। कल्याण जी ने कहा चलिए ठीक है आप कहते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। बहरहाल कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक इस फिल्म में सुपर हिट हो गया और इस फिल्म ने दोनों का करियर ही बदल दिया। एक एक गाने ने इस फिल्म के धूम मचाई। दम दम

ने यहाँ से स्पीड पकड़ ली और ये तब तक चली जब तक उन्होंने खुद म्यूजिक देना बंद नहीं किया। अभी वक्त है गाने सुनने का और गानों के बाद हम बात करेंगे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गाना कैसे बना, इसका ख्याल किसको आया और क्या क्या हुआ, इस गाने की सारी कहानी आपको बताऊंगा ब्रेक के पार। इसलिए सुनते रहिए रेडियो मैसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी कौन है मम्मा?
2: जूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: स्वागत स्वागत स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत सिंगापुर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। आज हम म्यूजिक डायरेक्टर डुओ कल्याण जी आनंद जी की बातें कर रहे हैं। सिंगापुर कल्याण जी आनंद जी एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां संगीत के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचते भी नहीं थे। ये दोनों अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं हमेशा कि आज हम जो भी हैं अपने माता पिता की वजह से हैं। उन्होंने हमें म्यूजिक सीखने की छूट दी, हम जो करना चाहते थे हमें करने दिया। अगर आप इनकी किसी भी फिल्म के गाने सुनेंगे, कोई भी एल्बम उठा लीजिए जिसमें कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक हो, तो कम से कम दो गाने तो आपको हिट मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कसम खाई थी कि हम हिट नहीं सुपर हिट म्यूजिक ही देंगे। और फिर कल्याण जी तो कहते भी थे कि किसी भी काम में ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, उससे काम आसान हो जाता है और काम करने में मजा भी आता है। कुछ ऐसा ही हुआ फिल्म सरस्वती चंद्र के दौरान भी। हुआ यूं कि कल्याण जी आनंद जी के किसी फैन ने इनको एक गिफ्ट भेजा। गिफ्ट में एक लेटर था और लेटर में एक फूल और लिपस्टिक बनी हुई थी, मतलब ऐसे जैसे किसी ने लेटर को किस करके भेजा हो। तो वो जो लिपस्टिक थी वो छप गई थी अंदर। आनंद जी ने देखा और कल्याण जी से कहा कि भाई साहब देखो आपके किसी फैन ने ही भेजा है। अब कल्याण जी ठहरे थोड़े शर्मीले मिजाज के, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बकवास है। वहीं लिरिक्स राइटर इंदीवर भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार ये चीज तुम्हारे काम की नहीं है, तुम बनिए लोग हो, तुम समझोगे नहीं, ये मेरे काम की है, लाओ। इससे तो गाने का मुखड़ा बन गया यार। कल्याण जी ने कहा मुखड़ा, इससे गाने का मुखड़ा कैसे बनेगा भाई। तो इंदीवर जी ने उसी वक्त उन्हें कहा कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, बन गया ना। और सिंगापुर इसी मुखड़े को लेकर ये सुपरहिट गाना इन्होंने बना दिया।

करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: लेगा तो
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। और आज मैं यहाँ कल्याण जानन जी की फिल्मों की बातें कर रहा हूँ, उनके किस्से सुना रहा हूँ। ऑफ कोर्स उनके बेहतरीन नगमे तो हैं। सिंगापुर कल्याण जी उस जमाने में आए जब बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स अपनी पैठ जमा चुके थे, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, नौशाद साहब हो, एसडी बर्मन दा हो। और कमाल की बात तो यह है कि एसडी बर्मन साहब इन दोनों के, कल्याण जी आनंद जी के फेवरेट म्यूजिक कंपोजर थे, जिनको ये अपना आदर्श मानते थे। और उसी टाइम कुछ नए डायरेक्टर्स भी आ रहे थे जिनको म्यूजिक कंपोजर्स चाहिए थे, जैसे मनमोहन देसाई। आनंद जी कहते हैं कि नए फिल्म डायरेक्टर्स इसलिए नए म्यूजिक कंपोजर्स को ढूंढ रहे थे क्योंकि जो सीनियर हो चुके थे उनसे फ्रेंडली वो काम नहीं ले पाते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि कल्याण जी आनंद जी ने कई उन नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो पहली बार भी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। छलिया में तो मनमोहन देसाई के लिए हिट म्यूजिक दिया ही। मनोज कुमार की भी पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की उपकार, उसके लिए भी म्यूजिक इन्होंने ही तैयार किया। इस फिल्म के दो सुपरहिट गाने थे, एक तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि नेशनल एंथम ही बन गया, मेरे देश की धरती सोना उगले।
2: मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
1: इस गाने के लिए मनोज कुमार ने इनसे कहा कि देखिए आप तो मुंबई के रहने वाले हैं लेकिन ये गाना हिंदुस्तान की संस्कृति दिखाएगा, आप कैसे बनाएंगे इस गाने को। इन्होंने कहा कि हम तो बना देंगे लेकिन इसे आपको गाँव में शूट करना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर सब वक्त शूट करना पड़ेगा। कल्याण जी भाई कहते हैं कि हमने तो जी जान से इस गाने को बना दिया लेकिन जिस तरीके से मनोज कुमार ने इसे शूट किया वो काबिले तारीफ है, चार चांद लगा दिए इस गाने में उन्होंने। कल्याण जी आनंद जी कहते हैं कि मनोज कुमार म्यूजिकल डायरेक्टर हैं, फिल्मों के गाने के बारे में बहुत सोचते हैं और हमें म्यूजिकल डायरेक्टर के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। बहरहाल इस फिल्म के बाद कल्याण जी आनंद जी ने मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में भी म्यूजिक दिया। इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल का हिट हुआ। सिंगापुर, अभी इतनी सारी फिल्मों का जिक्र मैंने किया तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी तारीफ कर रहे हो कुछ तो सुनवा दो। तो लीजिए, आपके लिए पेश हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बने ये बेहतरीन नगमे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ रहिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ये भाई और बहनों, अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आईका ओ आईका, ओए कर्नल सिंह ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो 24 घंटे सातों दिन अब आपके साथ। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की, या यूं कहिए कि उन्हें जी रहे हैं। सिंगापुर अब तक यानी 1970 से पहले कल्याण जी आनंद जी के गानों की आवाज थे मुकेश, रफी साहब, महेंद्र कपूर और मन्ना डे। एक बार किशोर कुमार ने कल्याण जी से कहा कि यार आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा गाना बनाओ, सब गा रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए भी तो बनाओ प्लीज। तो कल्याण जी ने कहा, देखो किशोर भाई, सारे गामा पधनी सा ये साथ ही सो रहे, मैं क्या करूं, मैं कहां से बनाऊं, कुछ अलग बनाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी ना। किशोर दा तो भाई साहब बढ़ गए, बोले नहीं आप तो कोई म्यूजिक मेरे लायक बनाओ। तो फिर कल्याण जी ने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं कुछ। और फिर 1970 में एक फिल्म आई राजेश खन्ना की सफर, जिसमें किशोर दा का गाया एक एक गाना सुपरहिट रहा।

कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूजिक था इस फिल्म में। और फिर इसके बाद किशोर दा ने कल्याण जी आनंद जी के लिए लगभग 270 गाने गाए और सारे गाने सुपर हिट रहे, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर क्यों हो, चाहे ब्लैकमेल का गाना हो पल पल दिल के पास, चाहे कोरा कागज का मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तमाम गाने सुपर हिट। एक नया सिंगर मिल गया था इस जोड़ी को। तो चलिए फिलहाल तो इनके कुछ और गाने सुन लेते हैं और मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि जब पहली बार इन्होंने देवानंद के लिए म्यूजिक दिया तो कैसे इन्होंने वो रीत ही बदल दी जो देवानंद के गानों में अब तक होती आ रही थी। ये रेडियो मसी 24/7 लाइव, डोंट फॉरगेट एंड कीप लिसनिंग लेजेंड्स फिर से विद समर।

जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा। और

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये सफर है लेजेंड्स का सफर, जो एक बार फिर से तय कर रहे हैं आप समर के साथ. और आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की. तो मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से कल्याण जी आनंद जी ने जब पहली बार देव साहब के लिए फिल्म जॉनी मेरा नाम में म्यूजिक दिया, तो म्यूजिक देने से पहले इनके दिमाग में आया कि हमें इस फिल्म का म्यूजिक कुछ अलग तरीके से करना चाहिए. देव साहब के गानों के शब्द जो अब तक लंबे लंबे सुरों में होते थे, कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें छोटा कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा. देव साहब ने खुद इसकी तारीफ भी की.
10: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं.
9: कल्याण जी आनंद जी के साथ जिसने भी एक बार काम किया, फिर बाद में उसने दूसरा म्यूजिक कंपोजर लिया ही नहीं, चाहे वो मनोज कुमार हो चाहे फिरोज खान हो. फिरोज खान की तो उन्होंने कुर्बानी और धर्मात्मा में म्यूजिक दिया जबरदस्त हिट रहा वो. और खास बात ये कि हर फिल्म का कम से कम एक गाना तो कल्ट क्लासिक बन गया और बाद में कई फिल्मों में उसे इस्तेमाल भी किया गया.

0: चाहे वो लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे, इस गाने का भी तो आगे डायरेक्टर साजिद खान ने अपनी फिल्म हाउसफुल में यूज किया था। यहाँ तक कि फिल्म जॉनी मेरा नाम के गाने पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, इस गाने का अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज सिम्पसन में यूज किया गया था। कल्याण जी भाई का क्लासिकल परफेक्शन और आनंद जी भाई का वेस्टर्न दोनों मिलकर गाने को चार चांद लगा देते थे। सिंगापुर अभी आपके लिए ये बेहतरीन नगमे आ रहे हैं। गानों के बाद आपसे आखिरी मुलाकात होगी तो कहीं जाएगा नहीं, मैं आपका यहीं इंतजार कर रहा हूं। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।
1: या जबरदस्ती करूं?
2: चाहता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: वेलकम बैक, यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। सिंगापुर आज की आपकी और हमारी आखिरी मुलाकात है। आज हमने बात की संगीत की बेमिसाल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 1956 से 1994 तक बेहिसाब और बेहतरीन म्यूजिक दिया। हर बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ इन्होंने काम किया, और ऐसा काम किया जो आज तक याद किया जाता है। चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर का ओ साथी रे हो, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, या फिर गोपी का सुख के सब साथी दुख में न कोए। ये तो वो गाने हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। आप लिस्ट बना लीजिए, हर एक गाने सुपर हिट है इनके, और इनकी एक सोच रही है। ये सोचते हैं कि अगर जैसे हमें मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार मिले जिनसे काम करवाना हमारे लिए आसान रहा, तो क्यों ना हम ऐसे कलाकार तैयार करें जिनसे आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। सिंगापुर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब इनके असिस्टेंट भी रहे। जब वो नए नए आए थे तो इनको असिस्ट करते थे। इनके अलावा अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, पंकज उधास, न जाने कितने ही कलाकारों ने इनसे काफी कुछ सीखा है। अच्छा, कल्याण जी भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल का था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इन्होंने तबाक से कहा कि शादी एक च्युइंगम की तरह है, शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन फिर बाद में उसकी मिठास खत्म हो जाती है, बस फिर उसे चबाते रहो चबाते रहो, न उसको फेंक सकते हैं न उसको निगल सकते हैं। तो सिंगापुर आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और जाते जाते वादा कीजिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाएंगे, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे आपसे मिलता हूँ, मिलूंगा आपसे यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले ही।
3: जोश में रहो।
4: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर DJ.

0: ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अभी स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइक की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
4: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ लोग कहते हैं कि मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ फ्राइडे हो तो मुझे तो रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत चाहिए, जहाँ पे हो मजा ही मजा। हाय सिंगापुर, फ्राइडे इज हियर। तो अब अगले 2 दिनों के लिए हम थोड़ा कम टाइम टेबल फॉलो करेंगे, थोड़ा कम आई गेट बैक टू यू फॉलो करेंगे, और थोड़ा ज्यादा अरे देख लीजिए यार अभी 2 दिन छुट्टी है। आए हाय क्या बात है, ये 2 दिन छुट्टी सुन के तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। खैर, गुड इवनिंग सिंगापुर, दिस इज मी मुग्धा तिरकिटथा, सिंगापुर से लाइव, एंड वेलकम आपका मस्त हैंगआउट 2.0 में। ये मैंने अपना खुद ही नाम दे दिया है शो को, एंड दिस इज As always, Radio Masi 24/7 live. और Friday है तो आपको तो हमारा सीन पता ही है। बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसके गाने, जिसके कैरेक्टर्स, जो ये फिल्म अपने आप में पूरी की पूरी आपको इंस्पायर कर देती है। हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करते हैं विद वाइब कनेक्ट, मतलब जिसका वाइब भी हमारे फ्राइडे से मैच हो। और आज की मूवी है ये इश्क हाए बैठे बिठाए राइट जब वी मेट, जब हम मिलते हैं धमाका होता है यार, चाहे मंडे हो चाहे फ्राइडे राइट। तो आज की मूवी है जब वी मेट, बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसके गाने, जिसके कैरेक्टर्स, जिसका स्टोरी लाइन, सब कुछ कितना वाइबिंग है यार, है ना। सीरियसली इस फिल्म से ज्यादा फ्राइडे फिल्म और क्या हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। प्लान कुछ और होता है, गीत कहीं और पहुंच जाती है, मिलना किसी और से होता है, मिल किसी और से लेती है, जिससे मिलती है उसे किसी और से मिलना होता है, वो गीत से मिल लेता है, और उसके बाद जब दोनों मिलते हैं तो किसी और से मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट स्टिल गीत को नहीं पता होता कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, और इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहती है। पर गीत की लाइफ का फंडा पहले निकलो बाद में देख लेंगे, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज के 3 घंटे ऐसे ही हैं, आगे बढ़ो आगे हम देख लेंगे, बिकॉज फ्राइडे है, प्लान कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा आएगा वैसा इंजॉय करेंगे राइट। तो शुरू करते हैं आज का शो मस्ती हैंगआउट 2.0। भाई ये तो राइमिंग हो गई, देखा ऐसे होती है राइमिंग, आप सुन रहे हैं मुग्धा को, ये भी राइमिंग हो गई। इससे पहले कि मैं राइमिंग खत्म ना करूं और चलाती जाऊं, ये वाला गाना एंजॉय कर लेते हैं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे इवनिंग का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुग्धा को ऑन रेडियो मस्ट 24/7 लाइव। पूरे हफ्ते ना लाइफ एक छोटे से बॉक्स में रहती है ना? सेम डेस्क, सेम रूट, सेम स्क्रीन, सेम लोग, सेम ऑफिस, सेम बॉस। हाँ, बॉस तो हमेशा बदले तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसा लगता है यार, दुनिया थोड़ी सी तो बड़ी हो, हम इस बॉक्स से थोड़ी तो बाहर आए, बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए। बट देन कम्स लाइफ में मौजा ही मौजा। फील एग्जैक्टली वही होता है फ्राइडे का। मूड खोलो, सीन खोलो, बड़ा करो, एक्सप्लोर करो, सरप्राइजेस आने दो आपके सामने। वैसे एक सरप्राइज की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। दुनिया ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूजीलैंड के अराउंड ज़ीलैंडिया नाम का एक ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। यस, ज़ीलैंडिया रफली अराउंड 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी इंडिया से भी बड़ा, और इसका अराउंड 94% हिस्सा समंदर के नीचे है। न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया बेसिकली उसके विजिबल पोर्शंस हैं जो हमें ऊपर दिखाई देते हैं। मतलब स्कूल में हमें 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ाया जाता था, हम याद करते रहते, रट्टा मारते, आज भी कई जगहों पे जीके का क्वेश्चन होता है ये। पर अर्थ क्वाइटली हमसे कह रही थी, हेलो सरप्राइज, वी हैव सम मोर फॉर यू। भाई देखो क्या है ना कि इतनी मिस्ट्रीज है हमारे आस पास कि ये सरप्राइजेस अगर फ्राइडे निकलने लग जाए तो हमारा फ्राइडे मस्त हो जाए। बट देन यही तो मजा है, फ्राइडे का मूड भी यही होता है। जो दिखता है स्टोरी सिर्फ उतनी नहीं होती है, जो नहीं दिखता वही तो असली स्टोरी होती है। तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्या पता वीकेंड में कोई नया कैफे मिल जाए, कोई नई जगह मिल जाए, या बस अपनी ही सिटी का कोई नया हिडन कॉर्नर मिल जाए। ये भी तो बहुत बड़ी बात है।

0: आइए इसी बात पर एक हिडन जेम मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. आप सुन रहे हैं मुग्धा को.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मौजा की मौजा, यही तो है हमारा फ्राइडे का फर्स्ट आवर का फील, डांस पार्टी मस्ती। कभी कभी ना असली मौजा तब होती है जब आप शॉपिंग करने जाए और शॉपिंग करके आए तो पता लगे बस आपकी तो अगली शॉपिंग का इंतजाम हो गया है। मौजा नहीं मौजा, लाइफ में ज्यादा मौज क्या चाहिए होती है। मस्ती मीडिया लिसनर्स आपके लिए बहुत ही मस्त ऑफर है। अगर आप सिटी स्क्वायर मॉल के फेयर प्राइस रोड शो से पर्सनली मिनिमम $100 सिंगापुर के क्रिशिवल नट्स खरीदते हैं तो उस फेयर प्राइस रिसीप्ट को जरा संभाल के रखेगा। आपको इसी से एक बात याद दिलाती हूँ, बताऊंगी, मतलब याद आ गई मुझे, पर फिलहाल तो उस रिसीप को संभाल के रखेगा क्योंकि वो रिसीप जब आप जीजी मार्ट बैलिस्टर रोड पर लेकर जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपके परचेज वैल्यू का एडिशनल 40% आपको जीजी मार्ट में शॉपिंग के लिए मिलेगा। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो गया आपको, मतलब अगर आपने मान लो सपोज करो $100 के कृषि वल नट्स खरीदे तो जीजी मार्ट में आपके पास होंगे $40 जिनके आप नट्स नहीं ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल कोई भी और चीज खरीद सकते हो, उसका 40%, समझ रहे हो ना आप। हाँ, इसे कहते हैं फ्राइडे, $100 की शॉपिंग $40 की मजा ही मजा। बस ध्यान रखिए ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 23 अगस्त तक ही वैलिड है, तो रिसीप पॉकेट में रखेगा लेकिन पॉकेट वाली पैंट मशीन में मत डाल देना बिना ध्यान से चेक किए, उस रिसीप्ट को संभाल के रखना है ना, क्योंकि आपके हाथ में आपकी अगली शॉपिंग लिस्ट तैयार है। बस मौजा नहीं मौजा करो और अगला गाना एंजॉय करो।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे फ्राइडे सिंगापुर। हेलो, आप सुन रहे हैं मुग्धा को। और मजा ही मजा का एक एटीट्यूड मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। पता है क्या, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगी, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ, समझे? क्राउड अप्रूव करती है तो करे, ना करे तो ना करे, मैनू की सानू की। इसी एटीट्यूड का एक बहुत ही मस्त एग्जांपल ना हमारे यहाँ सिंगापुर में देखने को मिला। मिस अर्थ सिंगापुर 2026 फाइनलिस्ट पर्ल जो है ब्यूटी पेजेंट के लिए सेकंड हैंड और थ्रिफ्टेड गाउन चूज कर रही है पहनने के लिए। कुछ आउटफिट्स तो अराउंड लाइक $8 से लेके $100 तक के हैं। लोगों ने काफी मखौल भी उड़ाया, मजाक भी उड़ाया सेकेंड हैंड कपड़े ब्यूटी पेजेंट्स के लिए एंड ऑल दैट। पता है, अब मुझे ये बात इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि सस्टेनेबिलिटी ना, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि पर्ल खुद फॉलो कर रही है, वो सिर्फ कैप्शंस में अच्छी नहीं लगती है। आप स्टेज पर आते हैं और वो स्टेज पे आते गायब हो जाए तो क्या मतलब है उसका, अगर आप एक एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं तो। मिस अर्थ सिंगापुर 2026 फाइनलिस्ट पर्ल ने इस एटीट्यूड को ब्यूटी पेजेंट में लाके बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। वो सस्टेनेबिलिटी की बात करती हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती है। इसीलिए ये जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं, ग्लैमरस प्लेटफॉर्म्स हैं, सेकंड हैंड और थ्रिफ्टेड गाउन्स पहनकर क्या दिक्कत हो जाएगी। कुछ आउटफिट्स जैसे मैंने आपको बताया काफी सस्ते हैं, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? स्टेज पे कॉन्फिडेंस पूरा है, ग्लैमर पूरा है, स्टाइल पूरा है, Who's knowing कि वो गाउन कितने का है जब तक कोई आपको बताएगा नहीं। This is the best part. Sustainable choices की बात normal life में हम करते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा stage आता है, हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्यों principles गायब हो जाते हैं? कभी कभी ना example set करने के लिए speech नहीं चाहिए होती है, practical दिखाना पड़ता है। आप क्या पहनते हैं, क्या खरीदते हैं, आप क्या चूज करते हैं, आप एक आइकॉन, एक आइडल बनेंगे कितने लोगों के लिए। तो अगर आप वो नहीं करेंगे आप कभी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो कोई आपको फॉलो कैसे करेगा? This is the मौजा, नहीं मौजा। आप उनको जो करना है वही करेगी क्योंकि आप उन्हें अपनी फेवरेट है, समझे?
2: हो नचो सारे जी फाड़ के,
1: मौजा नहीं मौजा करो, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, आज का फ्राइडे एंजॉय करो वे दिस ट्रैक।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जर्नी जो आपको लगे कि खत्म से हो रही है तो कभी कभी कहानी को एक और राइड मिल जाती है। एंड दिस इज द न्यूज। हेलो एवरीबॉडी, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, लेट मी टेल यू, आप हैं शो के सेकंड आवर में। एंड दिस इज मी योर आरजे मुग्धा, आपकी हमसफर इन द शो मस्ती हैंगआउट, जिसको मैंने स्वतः ही घोषित किया है मस्ती हैंगआउट 2.2, क्योंकि फ्राइडे दिन अलग है, वाइब अलग है, मैच अलग है, राइट। देखो क्या है ना, हमने आज की जो फिल्म उठाई है दैट इज जब वी मेट, इसके गाने, इसका फील, इसका वाइब, सब कुछ बहुत अमेजिंग है। एंड आज ये शो का सेकंड आर है, जब वी मेट का पूरा मजा यही है। जब आप सोचते हैं बस घर चलते हैं, कोई दोस्त आपको बोलता है एक और जगह चलते हैं ना प्लीज, यही तो है जब वी मेट। आदित्य को कहां पता था कि एक ट्रेन जर्नी एक कहानी बन जाएगी उसकी जिंदगी की। डेस्टिनेशंस बदलते रहते हैं, लोगों के साथ उसका इक्वेशन बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं और राइड इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइड, हॉलीवुड की एक राइड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबी रनिंग राइड्स में से एक बहुत बड़ी अपडेट है। विन डीजल ने कंफर्म किया है कि फास्ट सागा की अगली फिल्म फास्ट फॉरएवर की शूटिंग जो है वो दिसंबर में शुरू होने वाली है। मतलब इंजन्स फिर से स्टार होने वाले हैं और फ्रेंचाइजी को एक और नया चैप्टर मिलने वाला है। सो बी रेडी, क्योंकि हम एक और राइड पर जाने वाले हैं। मुझे इसीलिए बहुत मजेदार लगता है, कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जिन्हें ऑडियंस बिना चाहती नहीं कि वो जल्दी खत्म हो। बिल्कुल फ्राइडे नाइट की तरह प्लान था जस्ट अ सिंपल डिनर, कॉफी, ड्राइव, और देखते देखते बात कहां से कहां पहुंच गई।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, you remember? जब we met की सबसे स्पेशल बात? हाँ नहीं, वैसे तो बहुत सी बातें हैं। हाँ मुझे पता है, दारा सिंह जी को पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसके अलावा Guess what? जब we met की गीत को याद करो। गीत की सबसे खास बात क्या है भैया? लड़की का कॉन्फिडेंस। नहीं, ट्रेन कभी नहीं छूटी। बात तो सही है, ट्रेन तो इसकी कभी नहीं छूटी, और जब छूटी तो बस उसके बाद कहानी बन गई। अलग बात है कि फिल्म में उसके बाद क्या क्या छूटता है, कौन कौन भटकता है, जर्नी कहां से कहां चली जाती है, खुद गीत को भी समझ में नहीं आता है। तभी तो गाती है, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। खैर, एब्सोल्युटली गीत का मोड इस वक्त चल रहा है। सिंगापुर में ना हम थोड़ा गीत वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। लिटिल इंडिया एमआरटी स्टेशन पे ना ओली नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है उसका ट्रायल किया जा रहा है, जो कि कम्यूटर्स को स्टेशन में रास्ता दिखाएगा, ट्रैवल इंफॉर्मेशन देगा और सही प्लेटफॉर्म और जर्नी इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा, समझे? ट्रायल जो है 31 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक वीक डेज पर चलेगा। मुझे तो ना ये फ्राइडे कम्यूटर्स के लिए काफी कूल लगा। यस, फ्राइडे कम्यूटर्स कह रही हूँ मैं, स्पेशली जब वीकेंड एक्साइटमेंट दिमाग में पहले से चल रहा होता है और डेस्टिनेशन पर दिमाग आपसे पहले पहुंच जाता है, हम प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे होते हैं, दिमाग पहुंच चुका होता है, देन दिस लिटिल ओले ओले हेल्प करेगा। तो अगर आपके सामने ओली आए तो बस पूछना, डायरेक्शन लेना और गीत की तरह कॉन्फिडेंस से बोलना, मेरी ट्रेन कभी नहीं छूटती, बाबा जी जल्दी से पहुंचा दो। गीत की तरह ट्रेन के पीछे पीछे भागना नहीं, क्योंकि ये ट्रेन आपकी पकड़ में नहीं आएगी। दरवाजे बंद हो गए तो किसी भी तरफ नहीं खुलेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ,
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: कंगना।
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: Hey, hang on. अरे ठीक है भाई, पता है ट्रेन नहीं छूट रही है, पर जरा ठंड रखो पाजी। अरे गाल तो सुन लो। देखो जब वी मेट में, जब मैंने देखा उसको, तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक आदित्य जिसका प्लान रेडी होता है, दिमाग सॉर्टेड होता है, चीजें प्लान्ड होती है, क्या करना है, कब किधर कैसे सब डिसाइड होता है, ठीक है ना। और एक है गीत, प्लान उसकी डिक्शनरी में प्लान नहीं है, सिचुएशन के बाद प्लान बनता है, ठीक है। फ्राइडे इवनिंग पर ऑनेस्टली हम में से आधे ज्यादा लोग ना आदित्य बन के वीकेंड की लिस्ट बना चुके होते हैं, एंड बाकी आधे गीत की तरह ठीक है बाहर तो निकले, देख लेंगे क्या करना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो अगर आपके अंदर गीत ज्यादा है, ज्योति राखी एंड फ्लावर शॉप आप जैसे लोगों के लिए वन स्टॉप शॉप आपके लिए। एक जगह जाइए और एक के बाद एक के बाद एक आपको चीजें याद आती रहेंगी, और जैसे जो जो जो याद आता रहे शॉपिंग करते रहिए। स्पेशली अभी तो राखी सीजन है, तो राखी इतनी है क्योंकि आप प्लान तो डेफिनेटली करके नहीं गई होंगी या गए होंगे। अब जब सामने जो पड़ेगा उसके बाद जो जो जो जो जो दिमाग में आता जाए वो खरीदते जाइए। ये भैया वो भैया, ये वाली दीदी वो वाली दीदी, ये वाला गिफ्ट वो वाला गिफ्ट, क्योंकि प्लान तो है नहीं, दो चार एक्स्ट्रा ही ले लेना, क्योंकि अगर आप गीत हैं तो पक्का आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, है ना। भूल गई, ऐसे मत करना बात। इसीलिए ज्योति राखी एंड फ्लावर शॉप इज जस्ट फॉर यू। कुछ नहीं भूलेंगे आप यहाँ जाने के बाद, क्योंकि सब आपकी नजरों के सामने है, समझ रहे। और अगर आप आदित्य की कैटेगरी में है तो भी दिस इज द वन स्टॉप शॉप फॉर यू। पूछो क्यों, आप तो लिस्ट बना कर आए हैं, एंड ट्रस्ट मी आपके लिस्ट का कोई भी सामान ऐसा नहीं जो यहाँ नहीं मिलेगा। घर की लिस्ट है ना, ऑफकोर्स सामान की, शॉपिंग, ग्रोसरी, बर्तन भगोने, ये सब सब सब मिलेगा यहाँ पे। राखी बांधने से लेके राखी की मिठाई बनाने तक का सामान, इंग्रेडिएंट, भगोने, कढ़ाई, सब, कुकर भी सर्व करना है तो वो भी। मतलब यार आप पाँव तो रखो, चाहे गीत हो चाहे आदित्य, सामान लेके बाहर आओगे। यस, फिर बोलना मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई नो, मैं भी अपनी फेवरेट हूँ। जल्दी जाइए ज्योति राखी एंड फ्लावर शॉप, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: सीख ले।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: जब भी नेट में एक प्रॉब्लम बार बार आती है, जाना तो है पर किधर, एक को बिल्कुल भी क्लू नहीं है क्योंकि वो दूसरे के भरोसे बैठा है, और जो दूसरी है उसको तो खुद ही नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है। मतलब जाना है पर किधर कैसे जाना है वो नहीं पता, उसको भटिंडा जाना है पर कैसे। गीत का प्लान कुछ और है, ट्रेन कहीं और है, आदित्य साथ में है, डेस्टिनेशन रास्ते में तीन बार अपडेट हो जाती है। दशहरा वीकेंड पर मूवी लवर्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है, आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, आपको नहीं पता कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, पर तीनों रास्ते हैं बहुत ही एंटरटेनिंग। अगर गीत आपके साथ है किसी भी रास्ते पे चलो, एंटरटेनमेंट श्योरली मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन पहले किधर जाना है ये नहीं पता। 15th अक्टूबर को, मैं क्लैश की बात कर रही हूँ, ज्यादा मत सोचो, 15th अक्टूबर को आ रही है रजनीकांत की जेलर 2, ठीक है। 16th अक्टूबर को अभी हाल में अनाउंस हुई है यामी गौतम की नई नवेली डायन जी, और इसी फेस्टिव वीकेंड पे राजकुमार राव की प्रहार भी आ रही है। तो बॉक्स ऑफिस मैदान पर तीन फिल्में हैं, तीनों बिल्कुल अलग फ्लेवर की हैं। इट्स अ दशहरा वीकेंड, मतलब एक तरफ तो रजनीकांत है, रजनी अन्ना मतलब गॉड ऑफ साउथ, तो आप समझ सकते हो, एक तरफ यामी गौतम है जिनकी फैन फॉलोइंग अपनी अलग ही लेवल पे है, एंड देन कम्स राजकुमार राव, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है, एंड ये फिल्म्स बैक टू बैक आ रही हैं एक ही वीकेंड पर। मुझे ऐसे क्लैशेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, कॉम्पिटिशन अपनी जगह है और ऑडियंस के लिए चॉइस तो चॉइस ही है। गीत वाले प्लानिंग प्लीज मत करना, थिएटर पहुंच करके मत बोलना अच्छा क्या देखें, टिकट नहीं मिलेगी आपको, मैं पहले बताती हूँ। यहाँ पे अपना आदित्य मोड ऑन करना पड़ेगा आपको, प्लान पहले कर लो उसके बाद जाओ थिएटर में। और इसी के साथ फिलहाल शो का ये आर यहीं पर खत्म होता है। आई एम वेरी प्लान विद माय शो बट स्टिल

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, शो के दौरान लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे नाइट में कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें क्वाइटली अच्छा नाइस ऐसे बोल के नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, फ्राइडे है बॉस, उनके लिए नगाड़ा बजा, बिना नगाड़ा बजाए अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। एंड दैट्स द सॉन्ग फॉर दिस आवर। बॉलीवुड से एक और अपडेट आई है, ब्रह्मास्त्र फैंस के लिए प्रॉपर नगाड़ा मोमेंट है बॉस। हम जब भी मेट के नगाड़ा गाने को भी फ्राइडे वाइब से कैसे जोड़े बिना रह सकते हैं। बज है कि दीपिका पादुकोण ब्रह्मास्त्र 2 में अमृता के रोल के लिए टॉक्स में है। अगर बात फाइनल हो जाती है, दीपिका के साथ रणबीर कपूर एज शिवा, आलिया भट्ट एज ईशा एंड रणबीर का देव और शिवा का ड्यूअल रोल एंगल, ओ माय गॉड, अस्ट्रावर्स का नेक्स्ट चैप्टर, इट्स गोना बी वेरी ग्रैंड। तो फिलहाल बस एक ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, पर जब इतनी बातें हो रही हैं तो आई एम श्योर कि कहीं तो आ गए, तभी तो इतना धुआं है। मुझे ना कास्टिंग का आइडिया काफी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं सिर्फ कास्ट ऐड नहीं करती है, पूरी फिल्म का स्केल बदल देती है। नाइट पर हम और भी बहुत सी नगाड़े बजाने वाली बातें करेंगे, क्योंकि ये बातें बिना नगाड़ा बजाए अनाउंस नहीं हो सकती, मतलब सेलिब्रेशन। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, I'll be right back।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। पता है नगाड़ा गाना जो है ना, उसका मूड बहुत औसम है। नगाड़ा बजा, अगर कोई डर भी बैठा होगा ना, तो इस गाने को सुन के अपने आप थिरकने लग जाएगा। वाई? क्योंकि कुछ चीजों की एंट्री क्वाइटली नहीं होती है, वो नगाड़ा बजा के होती है। और जब नगाड़े बजते हैं तो बिना थिरके तो आप रह नहीं सकते। तो थिरकिए, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। एक ग्रैंड एंट्री की तैयारी हो रही है। महाकाली में अक्षय खन्ना नजर आएंगे शुक्राचार्य के अवतार में, यानी कि असुरों के गुरु। जो लोग थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री और माइथोलॉजी पे बिलीव करते हैं, दे नो शुक्राचार्य कौन है और असुरों के गुरु कौन है। तो अक्षय खन्ना विल बी शुक्राचार्य। उनका एक लुक रिवील हुआ है, छोटे से है लुक में, वो लॉन्ग सिल्वर बियर्ड और बहुत ही इंटेंस प्रेजेंस और एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड अक्षय खन्ना आपको दिख रहा है। और अब मेकर्स ने अनाउंस किया है कि 24 अगस्त को उनका पहला ऑफिशियल ग्लिम्स रिवील किया जाएगा। सो व्हाट आई फील, मुझे लगता है अक्षय खन्ना के साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आवाज नहीं करते, नॉइज क्रिएट नहीं करते, लेकिन कैरेक्टर आता है तो अटेंशन अपने आप मिल जाती है। ये वो डीजे हैं जो हेडफोन लगा के नाचते हैं, मतलब आप इनकी नॉइज नहीं फील करेंगे क्योंकि आप इसको बजाते नहीं, अपने हेडफोन्स में सुन लेते हैं। पर नगाड़े तो बजेंगे भाई, मैं तो बिना नगाड़ा बजाए इस बात को जाने नहीं दूंगी। डेट नोट कर लीजिए, 24 अगस्त। समझ रहे ना बात को।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, फ्राइडे नाइट का मूड कुछ ऐसा होता है कि हर खुशी के लिए ट्रॉफी या प्रमोशन जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, कभी कभी पहली बार माइक पे बिना अटके बोल देना, कभी अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर देना, कभी स्टेज पे खड़े होके ऑडियंस को एंगेज करना एंड देन सोचना वाओ आई कैन डू दैट, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, यू कैन डू एनीथिंग बेबी। नगाड़ा बजाने के लिए इतना काफी, और जब आप ये कर लेंगे तो नगाड़े अपने आप बजेंगे एंड दैट्स व्हाई नगाड़ा इज सो स्पेशल। इसीलिए मुझे मस्ती मीडिया एकेडमी का ये जो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे आप सिर्फ आरजे नहीं बनेंगे, पॉडकास्टिंग, मीडिया प्रेजेंटेशन, इवेंट होस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे आप। और ऐसा नहीं है कि आपको लगे ओ माय गॉड ये तो मैं नहीं कर सकता, वो तो मैं नहीं कर सकती, या फिर ये तो मुझे आता है, वो तो आई कैन डू दैट। यहाँ पे तीन लेवल्स हैं और तीनों लेवल्स की अपनी अपनी खासियतें हैं, अपने अपने कोर्सेज हैं। आप इनमें अलग अलग लेवल्स में अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, पर सबसे पहले आपको एक काम करना है। फॉर डिटेल्स बाद में आप इसकी वेबसाइट पे जरूर जाएं, लेकिन उसके पहले आप अपना एक छोटा इंट्रो जो है लिखकर मुझे भेज दीजिए, हमें भेज दीजिए info@radiomasti.com.sg पर। और जब आप अपना इंट्रो ब्रीफ सा इंट्रो लिखकर हमें भेजेंगे, हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेंगे आपको किधर कहाँ कितना और कब तक रखना है। सो छोटी छोटी खुशियों के लिए शुरुआत कर लीजिए, सेलिब्रेशन अपने आप बन जाएंगी। एंड फॉर डिटेल जरूर विजिट कीजिए मस्ती मीडिया एकेडमी का हमारा पेज। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बस आज मस्ती हैंगआउट 2.0 पे आपकी फ्राइडे राइट यहीं पर खत्म होती है। आपकी कोई ट्रेन भी नहीं छूटी, आपका वाइब भी बना रहा और आपने एक मस्त वाली राइड भी एंजॉय कर ली है ना। शुरुआत मौजानी मौजा के साथ हमने की थी एंड देन वी वेंट टू जब वी मेट और फिर नगाड़े बजा करके हमने शो को खत्म किया। एक बात पक्की है, सेलिब्रेशन के लिए बड़ा रीजन जरूरी नहीं होता है। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी विंस, एक अच्छा प्लान, फ्राइडे, दैट्स इट। इस वीकेंड परफेक्शन आप बिल्कुल मत ढूंढिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, एक अच्छी मेमोरी ढूंढिए ताकि आगे आने वाले बहुत सारी वीकेंड्स मेमोरेबल बन जाए। दिस इज मी मुग्धा, आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट स्वघोषित 2.0 ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अगले फ्राइडे तो मिलेंगे पर उसके पहले मंडे भी मिलेंगे, क्यों घबरा रहे हैं? अगले शो में मुलाकात करेंगे, इतना ही काफी, राइट? नए गाने, नई बातें और अमेजिंग खबरों के साथ विद ऑल द मसाला। तब तक के लिए सिंगापुर अपनी मौजे मौजा संभाल के रखिए, नगाड़े बजाते रहिए, जर्नी एंजॉय करते रहिए एंड कीप द वाइब अलाइव। आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट, अब आगे के शोज और गाने एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर, हम आपके हवाले। जोश में रहो।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
9: भाई की डन है मम्मा।
10: ड्यूटी
11: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
8: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांभो रे सांभो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

जैसे ठहर गया है यहीं। हर तरफ एक अजब उदासी है।

मैं क्या काका जी, तुसी इंडिया दी हो।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

was the message, eh?

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट